0: कहाँ आना है। वन माउंट नया साइड से
1: it is good.
0: Stretch of 936.
1: All right.
2: Hey, California. Tell me one more time in the derailleur.